रत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिल तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितव है उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंत उपाय ताकार जक आगे कर तरया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जन्म पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया ऊड़े ऊड़ आवे सह कोसा तिस पाछै बचरे चरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मैं सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सौ पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सौ पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याम है सब त्याम है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किल बिक सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। सीरस्तु जप हे दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै ब्यापत कोई। अड़ल सुने गुंग जो या है सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह। ओ जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सहस पढ़ि जय, अर्ध सहस उन्तीन कहि जय। भाद्रों सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पूप संवादे, 405 चरित्र समाप्त। मस्त सब मस्त अपजूं दोहरा, दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार। आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार। चौपाई मैना गणेश प्रथम मनाऊं, किसन बिसन कब हूँ न त्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहे गहे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सत्र हमारे मरिय। देग तेग जग में दौ चले, राख आप मोहे और ना दले। तुम मम करहो सदा प्रतपारा, तुम साहेब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहे मैं किंकर थारा। दास जान दय हाथ यबारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरों भगवत को त्याना, बहुर करो कविता भिधनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब लिहो सुधारो। कब्यो बाच दोहरा, जो निज प्रभ मो सो कहा, सो कहयो जग मा है। जो ते प्रभ को त्याय है, अंत सुरक को जा है। दोहरा हर हर जन दुई एक है, बिविचार कछ ना है। जलते उपजत रंग ज्यों, जल ही बिखै समा है। दोहरा जब आयस प्रभ को पयो, जन्म तरा जग आय। अब मैं कथा संक्षेप ते, सब हूँ कहत सुनाय। कब बाच दोहरा, ठाड पयो मैं जोर कर, वचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठते हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मो, कोटक बिशन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा की थे, रव सस्क्रोर जलेश। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत। सुर्ग बास रघुवर करा, सगरी पुरी समेत। चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे, दुख पाप ते निकट न आवे। बिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद छह सके न कोई। संबत सत्रह सैस पचावन, हाड़ बदी प्रथम सुखदावन। तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लो लेहो सुधारा।
दोहरा नेत्र तुमके चरण तर स्तोदर तीर तरंग श्री भगवत पूरण कियो रघुबर कथा पर संग साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबैबो भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार।

जिस मरत सुख होए सगले दुख जा है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।

कथा कीर्तन सुखदाई सज्जन सच्चा पातशाह शीर्षहां दशाहु जिस पास बैठिया सोहिया

तीर्थ जित सत सरनावन गुरमुख आप बुझाए। अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए, तित नहातै मल जाए। सच्चा

प्रसाद गौन गान उदार महिमा पारा सुन पंग उपमा नंग अनुपम प्रकाश निस दिन अनास आजन बाहु साहुन साहु राजन राजु पाड़न पाण देवन दे उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बालन रंग करण काल काल अन काल अनुभूति अंग अब पंधु अब पंग कात मित पारु गौन गान उदार मौन गुण प्रणाम निर भैने काम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिशा कर्म आदृशा धर्म सर्वा प्रणाडे अंडन बाडे चात्री छंद तह प्रसाद गोबिंद मकंदे उदारे पारे हरियम करियम नामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भक्ति चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चात्री छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म अजाय न चित्र न मित्र प्रय पवित्र प्रतिशा अधिशा अदृशा कृष्ण भगवती छंद त प्रसाद करते के अछज दिशा के अभिज पेशा के अगंज कर्म के अपंज परम के अभिज लोक के अदित सुख के अभूत वर्ण के विभूत करण के राजिंग प्रभ के त्रमंग तुझ के सुख वर्ण के सर्वा भरण के जगतं कृतियं के छतरंग छत्रियं के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपहनुप के आद अदेवे के आप अपेवे के छतरंग बिहीन के एकादि न के रोजी रजा कर ही मारे हक हाँ पाक पे अबे के गैब लु गैब के आप लु गुनाह है के साहन साह के कारण कुनिंदा है के रोजी देहांत है के राजक रहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र धाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीनाय के सर्वत्र लीनाय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पुख के सर्वत्र तरण के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पानय के सर्वत्र मानय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वम कलिम के परम अफीम के अकल अलाम के साहब कलाम के सुनल भजुम तमाम हमेशा सलाम सलीखतम दाम गरीब सकस्ता है गरीब प्रस्ताय बलांदल मकान है जमीन जमान है तमिल तमाम रुजल नदान है जकीन है तम तमी मुल तुजुतमा मैं रुजल नदान हरी फुल जी मैं रजायक जकीन अनेक कुल तरंग है अभेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज निरुक्त स्वरूप है तिर मुक्त विभूत है पर भुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज सुधा सर्व साज है समस्त सलाम है सदैव काम है सदैव काम है निर्बाध रूप है अगाध है अनूप है ओ अंगाध रूप है अनास रूप है अनंगी अना मे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्ग त्रिबादे अगंजे अगाधे शुभम त्रिभागे सुसर्भ अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेख है लेख है भरम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है अभय है भूत है तूत है अनास है दास है धंध है बंद है भक्त है भरक्त है नास है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलिख है देख है अलिख है भेख है अटा है गा है सब है गम है नील है नाद है अनित है सुनित है जात है जाद है चरपड़ छंद त प्रसाद
सर्वंहंता सर्वंगंताउ सर्वंख्याता सर्वंज्ञाताउ सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंत्राणं सर्वंकर्मं सर्वंधर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता अनुचावल छान्दोता प्रसाद नमो नरकनाशी सदावं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तातन मातन जातन पाताय नरसाक श्रीका मितोमी कै सदैव प्रभ अजय अजा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसर सलाम है समस्तल कलाम है के साहब दिमागे के हुसन चिरागे के कामल करीम है के राज करहिम है के रोजी दिहंद है के राज करहिंद है करी मल कमाल है के हुसन जमाल है गनी मल कराज है गरीब नवाज है हरि परस कान है हर असल फिकान है कलंक प्रणास है समस्तल निवास है अगंजल गनी मैं रजाई कर रही मैं समस्त जो बाहे के साहब क्या है कि नरक प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सरबुल गवान है मेसुल रवान है तमा मल तजीम है समस्त अजीज है परम परम ईस है समस्त अदीस है अदेशल अलेख है अमेसल अपेख है जमिल और जमा है अमी कुल माँ है करीमल कमाल ने के जोरत जमाल ने के अतरंग प्रकाश है कि मित्तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मित्तो विभूत है कि मित्तो उपसा है कि आत्म प्रभा है कि अतरंग अनंग है कि मित्तो उपांग है मद पाठ छंद प्रसाद मोन मन प्रणाम गुण गण मध्यम अरबर गंज हर नर पर भंज आन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड बर नर अमंड अनपहनास मोन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अंश जंगासन भंग पार गात मित दारू जल थल अमंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बंत अनपहनास तरे धर त्रास आदन बाहु कस दाहु ओंकार आदु कथनी अनादु खलखंड ख्यालो गुरबर काल कर कर प्रणाम चित चरणाम अणछ गात अरणज बात अनु आज बात अणचंज गात

तो प्रसाद करणालय है, अरकालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, काल कारण है, सर्व वारण है, त्रैत्य के तन है, जाके कर्ण है, मन माने है, जग जन है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश है, सर्वनाश है, करुणाकर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, पारते पर हैं, करना कर हैं, अजप जप हैं, अथप थप हैं, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करना कृता है, कृता कृता है, तरणी त्रित है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृता अमृता अमृता है, अजबा कृता अमृता अमृता है, नर नायक है, खल कायक है, विश्वंभर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पावपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृता है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद है, नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संगताम संगसात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग रूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान नमो ज्योत ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र नादन बेपूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशा से नमो बांक बंके अभंगी सुपे अलंगे नामे त्रिभंगी त्रिकाले अलंगे कामे एक अचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकास अगंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख अपेख नाम अकाम गह टह नाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न लेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्त निवासे निरकामंग विभूते समस्तल सुपे कुकर्मंग प्रणासे स्वधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासे करी मुल्क निंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजाय विघ्निमे हरियं करियं करिमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम पहु शुभम सर्वदा सर्वयुक्ते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विपूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विपूते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तय प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सदार्थ शुद्ध सदाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देख प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिनेक रति के बाते मतंग जर जल संग अनुपातंग संग सवारी कोट तरंग परंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भाली भुजान के भूपली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे इते पाए तुका हो पाए भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजानक सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणन जात बचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दयादम दानो सुसंजम ने अनेक बसिखाए वेद पुराण कते पुराण जमीन जबान सुबान के पेखाए पावन आहार जति जतारु सब सुबचारु हजार देखा श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बने लिखाए शुद्ध सुपाह दुरंत बाह सुशासना दुरजान दलांगे
भारी गुमान परि मन भयंकर पर्वत पंख हले न हलंगे तोर अरीन मरोर मुआसन माते मतंगण बान मलंगे श्री पातशाह भगवान कृपा बिन त्याग जहान दंत लंगे वीर पार बड़े बिरयार विचार हिसार की धार पछैया तोर दे सुमलिंद वासन मातिक जान की मान मलैया गाड़े गढ़ान की तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंद दानव देव फनिंद सातर भूत भविख वन जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बार जा तुन पापन के बहपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नाद बजाण तलो को राज करांगे कोटि नानक जात गदान अनेक स्वंबर साध भरंगे जे नर श्री पथ के प्रस है पाग ते नर फिर न देह तरंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे भक्त हन गायो नाथ प्रिय लिए सास मंदर लोग गए पर लोग गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम की उतने ही प्रपायो काहू ल पाहन पूछ धरियो सिर काहू ल लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछाह कुशीस नवायो को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कोर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन थायो कोर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर छाव पूर्ण होए चित की छाव तब चरण अनुमान रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट बत मुकाबो आप हार दय मह बचाओ सुखी वसै मोरु परवारा सेविक सिख सब करतारा मोर चरण कर दया करिया ऐसा बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम चाण कोई अब न त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारी तारिया है चौन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दया मुझाए बरे आये मरण काल का त्रासन बरे आये हो जो सदा हमारे पच्छा श्री आसा तो जो कर हो रक्षा राख ले हो मोह रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तम हो प्री चातुर दसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरंग काल पाए शिव जी अवतरंग काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार हताय हमारा जमकाल सब जगत बनायो देव दैतो जचन पुजायो आदंतिकाय अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तसी को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुरु सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना कट कट के पढ़ पढ़ की जाना जब कर करा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा जब या कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बोझ उचार तुम सब ही तेरा तन रालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीला नाद संभ तां का मूड़ो चारद भेदा जाको भेम न पावद भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड़ कथ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेवा
ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੋਧ ਜਿੱਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾਉ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ।

तो कथियो कथ कहाड़ी। ए मन चंचला चुतराई किरा न पाया, चुतराई न पाया किराई तो सुन मन मेरी आ। ए माया मोहनी जिने परम पुलाया, माया ता मोहनी इतना कीती जंट गाली पुराइया। कुर्बान की तत् सब टा जन्म मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चुतराई गिर न पाया। ए मन प्यारे आ तू सदा सच संभाले, एह कुटुंब तू जे देखदा चला नाही तेरा नाले। सा तेरा चला नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा का मूले न कीचा जतंत पछुताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तो होवे तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा अंतरांत न पाया, अंतो न पाया कि न तेरा अपना तू जाने है। जीव जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाने। आख तां वेखै सब तू है, जिन जग तू पाया। कह नानक तुस दा अगम है तेरा अंत न पाया। सौर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन मसाया। जी जन सब तू पाए, एक वेक प्रश्न आया। लब लोभ अहंकार चुका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया।

उत्तम सो सुनह नाहीं फिरन जो बेता लिया, कह नान जिन सत्या कूड़े लागे, इतनी जन्म जू है हारिया। जी हो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल, जी हो निर्मल सास गुते करनी कमाणी, कूड़ की सोय पहुंचा नाहीं मरसा सास माणी। जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे, जे को सिख

लड़सर तिर जनावे उतरे नहीं मैं। जिन पट दरबार गुदड़ते भले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसै रंग रोवे चुप ही कर जाए।

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जान। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूरे। बिनवंत नानक।

कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत जूनी सै भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच।